0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें नॉन स्टॉप भजनों का आप आनंद ले रहे थे। अब से कुछ ही पलों में ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होगा और सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे ज्योति आनंद के साथ कार्यक्रम सुप्रभात। सुबह 7:05 पर रेणु भट्ट आपके साथ होंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, जिसमें आप दिल्ली शहर के बारे में जानकारियां सुन पाएंगे और साथ ही साथ फोन इन कार्यक्रम होगा। ये सुबह 8:08 आप सुनेंगे ज्योति आनंद के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और सुबह 9:00 आपके साथ होंगी रेणु भट्ट कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने में, जिसमें आप नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक सुन सकते हैं। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर, जिसमें अदिति बिष्ट आपके साथ होंगी। सुबह 11:05 पर बबीता रावत आपके लिए लेकर आएंगी बॉलीवुड के गलियारों से कार्यक्रम, जिसमें बॉलीवुड जगत की बातें आप सुन पाएंगे। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम होगा प्लेट कूल का अदिति बिष्ट के साथ। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग, बबीता रावत इसमें आपके साथ होंगी। दोपहर 2:00 विनीता बेदी आपके साथ होंगी कार्यक्रम आशियाना में, जिसमें आज विषय रहेगा संचार साथी और एक्सपर्ट होंगे श्री किशोर इक्का। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, ये फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आज विषय रहेगा कॉमन स्टमक अलाइनमेंट्स इन समर्स, इसमें आपके साथ रहेंगी श्वेता शर्मा। शाम 4:00 का समय रहेगा सैनिक भाइयों का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स विनीता बेदी के साथ।

5:05 पर आप सुनेंगे श्वेता शर्मा के साथ कार्यक्रम सिटी लाइट्स, जिसमें दिल्ली शहर के बारे में आप रोचक जानकारियां सुन पाएंगे। शाम 6:05 पर एम्ब्रेन खान आपके लिए लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम हिट्स एंड मेमोरीज, इसमें रघु आपके साथ होंगे। रात्रि 8 का समय रहेगा कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जिसमें नॉनस्टॉप डांस हिट्स आप सुन पाएंगे, इसमें आपके साथ होंगे अम्ब्रेन खान। रात्रि 9 का समय रहेगा आपकी याद आती रही कार्यक्रम का, इसमें आपके साथ आज होंगी रेशमा फारूकी। रात्रि 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम ऑल दैट जैज का आप आनंद ले सकेंगे, रघु आपके साथ होंगे। और रात्रि 11:05 पर गजलों की खूबसूरत महफिल सजेगी कार्यक्रम रंगे महफिल में रेशमा फारूकी के साथ। तो ये थी आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में

0: समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई

0: महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति से।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां। पत्र के अनुसार CBSE की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sri Hasak Phuanketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia Dato Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
4: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
5: Assam cabinet should pass uniform civil code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
3: With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill. The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Director General of

0: ढोकले के साथ साथ पुदीने की चटनी भी बनाना सिखाएंगे। ये चटनी बड़ी निराली है, ये न सिर्फ खाने के लिए बल्कि लोगों का चरित्र समझने के बड़े काम आती है। तो थोड़ा पुदीना
1: राव की दृष्टि आपके साथ में घर से हट चुकी है, अब आप गधों को छोड़ इंसानों से प्रेम करेंगी। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल है।
0: नई दिल्ली में तापमान आज सामान्य रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो आप पर बारिश जरूर होगी।

0: कुमारी। मैम अपने के स्वागत असे।
1: थैंक यू
0: मैम। लिसनर्स खांगे अपने कारण म्यूजिक तो की असे इतो लखो ओपरे कोई दिबो पारिबो।
1: म्यूजिक तो सो मनुवे अलग अलग निजो लगा डिफिनेशन थके मोय कारण तो इशू गले तो इसो बार मोहंगे दिया लगा प्रेजेंट एकता इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड कोना मोला विश्वास असे आरो मोय तो फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 23 दे डेविड पुरा ता लगा म्यूजिक तो बचा गिना किंग सोल लगोदे आत्मा बिया थके टाइम दे इतु हटाई दिया ला उदो हथियार असे म्यूजिक तो हथियार एकता असे कोना मुदो बिशी विश्वास कोरा एकता असे तो इन्या हो दो इतु तो इसो वही दिया लगा असे आरो इसो वही इतु इतु तो हथियार एकता मनु एकता की दिशे कोना मुला विश्वास तो इतु असे दे
0: बिशी भाव
1: यस
0: अच्छा तो आरो एकता होदिबो अपनि केनगा म्यूजिक आरो गाना बजाबोले इन्स्पायर हुइशे
1: गाना कुरिया आरो गाना बजा इतु दु शुगले दो लाइफ पाही ना
0: ओके
1: लाइफ पाही मोगंगे दुख पे हेकाय खुशी भी हेकाय तो इनिया बाही अस्ते अस्ते म्यूजिक पाही मुई बिशी रिलेट कोले पारी जाय लाइफ लोगो दे तो इनिया निशना दुख पाइशे गुले दो मुदो म्यूजिक खुशी पाइशे गुले भी म्यूजिक इनिया ना तो मुला इंस्पिरेशन दो शुगले लाइफ इसो बा लाइफ दिया बा मुदो इतु मुला इंस्पिरेशन दो तादे बा पासे
0: ओके माम बाल हुनु बोले अच्छा अपने के नगा लगा गाना दे स्पेशलाइज असे
1: मुलगा स्पेशलाइजेशन दो मुई मुलगा चर्च म्यूजिक कोरे थके दम दे इदु खुद चर्च म्यूजिक तो मोस्टली महंदो कोरल कोरल पीसेस खान हिम्स खान इने गासे होली फॉर्मली दो मुई आई मोर इनटू क्लासिकल म्यूजिक तो मुला क्लासिकल म्यूजिक टीचर दो मैडम अजिन लोंगचारी सुचा इतु इना थाकिगिना मुई अंडर हर मुदो क्लासिकली वोकली ट्रेन्ड अंडर क्लासिकल जनर इनिगा हि कोबोनागि तो मोर ऑफ अ कोरल हिम्स ना
0: ओके ओके
1: इनिगासे
0: शिबालसे ओके अपनि के कुन प्र म्युजिक लबले इन्स्पायर कुरिशे आरो केनागा इन्स्पायर हुइशे अपनि बि
1: मुदो म्युजिक तो मुये इन्स्पायर्ड कुरिया मनु तो सबसे आगे दो मुलगा पेरेंट्स खान ही तगिशे मोहन बच्चा टाइम बरा मुलगा पेरेंट्स खान दो म्यूजिक तो मन खुशी पाए लुई तखान दो दे डिड नॉट हैव जे थगे नै ना मनु थांगे हेकाई दिबुले खुशी पाउला तु ही न होइले दो अलग तो थगे नै तो तहान लगा खुशी दो मुइलोते वा मैनिफेस्ट कुरि जानिसना तहान ही मुगे माय फर्स्ट इंस्पिरेशन असे तो इनेगा थगिना बच्चा टाइम दो बाबा अम्मा थगिशे शादी हुआ पिछे दो जतो मुलगा मुता बिशि मुगे पुश करे मुगे बिशि इंस्पायर करे इनेगा निसिना आरो इतेदो एज अ म्यूजिक टीचर मुलगा स्टूडेंट्स खान असे मुगे इंस्पायर करिया इनेगा से so every phase of my life mudo music kushogle do mugi inspire kuramando do alag alag thagise
0: okay bishi hunule mam bhal aro apni laga inspiration hunina I believe listeners can be aro bishi aro inspiration hobani ki gena biswas ase aro apni ge ekta hutule munjaro school days nohili bi church or any platform de ki laga music instrument bacha suru kurishina apni do
1: mohando christian state ase to church ja khushi paiso bonwi तो चर्च पर ही मुदो मुलागा फर्स्ट प्लेटफॉर्म इतु थाइसे कुइ थाइगा निशना मुलागा बाबा अम्मा तो छोटो कीबोर्ड एकटा किनिगिना मुइ दिया मुला इंटरेस्ट तो दिखिगिना तो इना होइना नोट्स कान दो ताइजुम बिना जने स्टाफ नोटेशन होलीविस टोनिक सोल्फा कोए इतु उला ताइजुन दो लप थाया ओतु ओल बेसिक नॉलेज थाया दो इतु वा हिकिगिना मुइ इतिया मुलागा फर्स्ट पीस को मुला ओरिजिनल न होय होलीबी मुलागा फेवरेट पीस ही हुजेशे इतिया दो हिम इतु दो तो इतुला दो स्वीट आर ऑफ प्रेयर इतु हिम दो मुलागा फर्स्ट presentation
0: okay.
1: church ke iniga thagise so this is my first piece yes
0: okay do ami ekta request ase apni ge amela listeners kan bi apni la first piece hunulo munjaigina asha thagibo do apni morom bra apni la first piece to listeners kan ge pachaina honai dibo paribo
1: okay is the common hymn ekta se sweet hour of prayer to itua moi tolo bachai dibo
0: okay

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello. Hello.
1: Hello, namaskar.
0: Hello, namaskar. Who is on the line?
1: Avinash Ali from Northeast Tripura.
0: Okay, Avinash ji, how are you today?
1: I'm fine.
0: Okay, so khabar kaisa hai, matlab mausam kaisa hai?
1: Mausam sab badhiya hai aur आपका कार्यक्रम फोन लग जाता तो बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ जी, आपसे बात हुआ अच्छा लगा। और बताइए, आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा
1: जी? आज मुझे सुनना चाहिए मूवी का नाम है बादल।
0: बादल, ओके
1: जी। और गाने के बोल हैं, एक ऐसा गीत है ना कि अच्छा, बादल में कौन कौन सा गीत है बताइए, अभी उस गाने का बोल भूल गया।
0: ए दिल ने मुझे,
1: अच्छा,
0: अनमोल प्यार पीन मोल पी के, आंसू बहाने वाले, दो दिन के लिए मैं रही पथकने वाला।
1: ये क्या पुराना बादल है क्या?
0: बादल ये मैं 1979 का है जी।
1: अरे ये तो ये नहीं, दूसरा था
0: पुराना बादल। और तो
1: ये, हाँ ये बहुत लगभग 1990 का दशक का होगा
0: जी, 1970s का है।
1: अच्छा अच्छा, फिर ये नहीं है तो मैं दूसरा बताता हूँ आपको।
0: चलो चलो, ठीक है
1: ठीक है। तो तमन्ना होगा?
0: तमन्ना, मैं देखता हूँ, तमाशा है तमन्ना, पर मेरा शायद नहीं है।
1: अच्छा, तमन्ना नहीं है तो फिर 1942 लव स्टोरी
0: जी। 1942 लव स्टोरी है,
1: उसमें से रिम ये गाना सुना दीजिएगा।
0: ओके, और क्यों ये?
1: क्योंकि रिम हो रहा है ना इधर, इसलिए।
0: अच्छा, थोड़ा सा रिम हो रहा है।
1: हाँ हाँ,
0: ओके। और पता ये किस किस का नाम लेना चाहूँगा?
1: पहले तो आप सुनेंगे,
0: थैंक यू।
1: उसके बारे अमल बसमचारी, विमल बसमचारी और दरअसल बसमचारी और भाईकुन मुंडा और राकेश जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, केसर सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, और अमर सिंह साहू और जितने सब लोग सुनने वाले हैं सब लोगों की बिल्कुल कम करेगा।
0: ओके ठीक है, थैंक यू सो मच अविनाश जी, सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग
1: जी।
0: तो माय डियर फ्रेंड्स, अविनाश फ्रॉम नॉर्थ त्रिपुरा ताई रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमिकन हुनी अबो 1942 अ लव स्टोरी फिल्म रा कविता कृष्णा मूर्ति और कुमार सोनोवाल स्टे म्यूजिक दिशा दीपमन लिरिक्स जब तक था।

0: Well, my dear friends, I'm calling the last lucky caller, I guess. Hello.
1: Hello, namaskar.
0: Hello, namaskar. Kaun bol raha hai?
1: Ye main Rakesh bol raha hu, district Shimla, Himachal Pradesh.
0: Okay, Rakesh ji, program mein swagat hai. Aur bataiye, last geet, last song hoga. Aapka kaun sa wala pasandida geet hai?
1: Ji, last caller to main hu, to mujhe gana suna hai, Bewafa Sanam hai.
0: Bewafa Sanam.
1: Ji.
0: हाँ बेवफा सनम है, कौन सा वाला गीत?
1: उसमें एक गाना है जिंदगी में प्यार सभी किया करते हैं,
0: जिंदगी में, यस
1: हाँ ये गाना सुनना
0: है। ओके, और किस किस को ये डेडिकेट करना चाहूंगा फटाफट से?
1: सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा पूरण वर्मा, अविनाश तेली, भगवान सिंह परमार और अमल बसुमतारी है और अंजलि बसुमतारी है और रमेश प्रजापति है और तमाम सुनने वाले सभी श्रोता के साथ ये गाना डेडिकेट।
0: ठीक है, तो राकेश राइट,
1: राकेश शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और सुनिए आपका पसंदीदा गीत।
1: ओके धन्यवाद।
0: ओके वेलकम। तो माय डियर फ्रेंड्स, राकेश फ्रॉम शिमला, दाहे अमिखला लास्ट लाकी खोला ठगी से, दाहे रिक्वेस्ट को लगा गीत हुनी हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।

0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: के साथ और इसी के साथ ही आपकी फरमाइशी गीतों का सफर शुरू होता है क्योंकि मेरा वाला सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है। 9868107070 इस पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और पूरी होगी आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट। पर एक शर्त है। शर्त ये है कि ऐसी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए जो मैं मजबूर हो जाऊं आपके लिए प्ले करने के लिए। तो सुनते रहिए मेरे साथ मेरा वाला सॉन्ग। और अभी जो गाना हम प्ले करने वाले हैं वो भी किसी की सॉन्ग रिक्वेस्ट है। और किसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट है चलिए बताते हैं आपको। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की ये फरमाइश सुनिए और इंजॉय कीजिए और अपनी फरमाइश भेजते रहिए हमारे पास। मेरा वाला सॉन्ग में इंतजार है आपकी फरमाइश का।

प्यार तो हमें आपसे बहुत है और इसीलिए हम आपके साथ हर घंटे बने रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हर घंटे तो नहीं पर इस घंटे आपके साथ बने रहेंगे और आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म सौदागर से इल्लू इल्लू क्या है ये गाना प्ले करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए हम उनके लिए ये गाना प्ले करते हैं।

और अगले गाने की जो फरमाइश की है वो की है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, मेरा वाला सॉन्ग में। गुड आफ्टरनून आरजे पपिता रावत मैडम जी, बिल्कुल आपको भी गुड आफ्टरनून। और अगला गाना आपके लिए हम प्ले करने वाले हैं वो है 1991 में आई हुई हम फिल्म का, आपने बिल्कुल नाम भी लिखा हुआ है, शुभा जोशी मोहम्मद अजीज की आवाज में।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ बबिता रावत आपके साथ। मेरा वाला सॉन्ग है आपका प्रोग्राम और इसमें करते हैं आप सॉन्ग रिक्वेस्ट। और अभी हमारे पास भी सॉन्ग रिक्वेस्ट पहुंच रही है बहुत सारे लोगों की, 9681070700 पर भी आप

कर सकते हैं, अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम तक बता सकते हैं कौन सा गाना आपको सुनना है। यहाँ पर अभी फिलहाल मोहम्मद फुरकान ग्राम सियाल मेरठ से फिल्म आया सावन झूम के, जी हाँ, इस फिल्म का गाने की फरमाइश की है। और लीजिए आप सभी लोगों के लिए ये गाना, और खास तौर पे मोहम्मद फुरकान आपके लिए।

आप लोगों से मिले बगैर तो हमारा भी जी नहीं लगता है, इसलिए तो हम सोचते हैं कि जब भी मौका मिलेगा हम आपसे जरूर मिलेंगे, और खास तौर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और इसमें हम जब आपके साथ रहते हैं ना, आपकी बहुत अच्छी अच्छी सी सॉन्ग रिक्वेस्ट पढ़ते हैं, तो बस यही मन करता है कि हर किसी

किसी की चॉइस का गाना हम प्ले कर दें, पर क्या करें, वक्त का तकाजा है, किसी किसी की चॉइस पूरी हो सकती है, क्योंकि एक घंटे में जितने से ज़्यादा गाने हम प्ले कर सकते हैं हम कोशिश यही करते हैं। फिलहाल मेरा वाला सॉन्ग में नौशाद चौधरी, अकरम चौधरी, आतिफा चौधरी और इमराना चौधरी की पसंद से राजीव नगर मंडोली दिल्ली 93 से ये प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का गाना।

वैसे कोई कोई है जो सपनों में नहीं आते हैं, सम्मुख रहते हैं, सामने रहते हैं। जी हाँ, आपके आसपास आपका साथी, आपके हस्बैंड एंड वाइफ। और ऐसे ही कुछ मनमोहन सिंह जी ने भी एक रिक्वेस्ट की है हमसे, बहुत ही खास रिक्वेस्ट है। इन्होंने कहा है कि जो गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी वाइफ को, वो गाना मोहरा फिल्म का है, ना कचरे की धार ना मोतियों के हार। तो लीजिए, यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर से मनमोहन सिंह जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मैसेज है। 9868107070 पर आप भी भेज सकते हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट। और जब बात आती है सॉन्ग रिक्वेस्ट की तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंतजार भी है कि उनकी पसंदीदा गीत को प्ले किया जाए। तो यहाँ पर जो अगला गाना आने वाला है आदित्य और श्रीकांत की पसंद से, मांडवी राजस्थान से, इन्होंने रिक्वेस्ट की है हमें जानवर फिल्म के इस गीत को प्ले करने के लिए।

वैसे अपने गाने की रिक्वेस्ट सुन करके सभी को चैन आ जाता होगा ना। यहाँ पर भी बड़ी लंबी फेहरिस्त है नामों की। बबन कुमार दास, ज्ञानती देवी, सपना सोहानी, परवीन विलेज, रोनिया कैजर सराय गया बिहार से, इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गाने की। और सुनिए भाई, जो गाना ये कह रहा है बिल्कुल सही बात है। जीने के हैं चार दिन, बाकी हैं बेकार दिन। जो भी है इन्हीं दिनों में है, और अपने जीने का मजा आज में लीजिए, कल की तो बस भूल ही जाइए।

0: से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: जी हाँ, आज आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे, विनीता बेदी होंगी आपके साथ संदेश टू सोल्जर में। आज हमारे गेस्ट होंगी विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स से। और उससे पहले भी आप बहुत सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, आशियाना प्रोग्राम होगा ठीक 2 बजे और अक्षय वट प्रोग्राम बेस्ड ऑन सीनियर सिटीजन है ये। लेकिन आज का टॉपिक है संचार साथी एक्सपर्ट श्री किशोर इक्का, DDG सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का आज का प्रोग्राम है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि 3 बजे होता है रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम और कॉमन स्टमक एलिमेंट्स इन समर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर गोविंद मखारिया प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से होंगे आपके साथ। तो ये सारे कार्यक्रम है लाइन अप। और अब मेरे जाने की हो गई है बारी, अगले प्रोग्राम में आपके साथ आशियाना में आप जुड़ेंगे। लेकिन लास्ट जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो सुनीता शर्मा शालीमार बाग से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और लोग भी हैं जो इस गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है इनकी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है, तो इसलिए इनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले कर दी जाए। तो ये कौन है? ये है सौरभ अरनेजा गाजियाबाद से। और इसके अलावा दवा भूटिया फ्रॉम सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम से, इन्होंने भी कहा है कि सानू का गाना सुना दीजिए। बट सानू का आज तो गाना हम नहीं सुना पाए, लेकिन सोनू का गाना जरूर सुनाएंगे आपको। तो सुनिए और एंजॉय कीजिए इस गाने को। और मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। कहाँ पर? आकाशवाणी रेनबो पर। जुड़े रहिए हमारे साथ दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी।
1: स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता, और आशियाना आपका अपना आत्मीय कार्यक्रम। अगले डेढ़ घंटे तक हम साथ चलेंगे उन रास्तों पर जहां दोस्तों अनुभव बोलता है, स्मृतियां मुस्कुराती हैं और उम्र जीवन की सबसे सुंदर कविता बन जाती है। जी हाँ, आशियाना के अंतर्गत आज अक्षय वट, ये है हमारी थीम, यानी आज का हमारा आशियाना समर्पित उन सभी को जो हमारे जीवन की प्रेरणा हैं, जिनका जीवन हम सब के लिए एक ऐसा खूबसूरत रास्ता है जिस पर चलकर, जिसके अनुभव लेकर हम सब अपनी दुनिया बसाते हैं। स्वागत है आशियाना में विनीता बेदी के साथ।

कमाल है क्योंकि तू बेमिसाल है। आप सभी का स्वागत है आशियाना में। आशियाना में आज की थीम है अक्षय वट और आज का कार्यक्रम समर्पित उन सभी वृद्धों को, उन बुजुर्गों को जिन्होंने हमें जीने की राह दिखाई है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। दोस्तों कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो, ध्यान दीजिएगा, अगर जिद हो मुस्कुराने की तो परिस्थितियां भी कभी हरा नहीं सकती। आज का हमारा ये प्रोग्राम समर्पित है हमारे उन वरिष्ठ जनों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने संघर्षों से घर बनाए, अपनी मेहनत से पीढ़ियां संवारी और अपने अनुभवों से समाज को एक दिशा दी। आज हम बात करेंगे उन सभी बुजुर्गों की जिन्होंने उम्र को सीमा नहीं बल्कि संभावना बताया। उनकी जिंदगी एक ऐसा सफरनामा जिससे बहुत कुछ सीखना है अभी बाकी।

मुझसे एक बात बताइए, क्या सचमुच उम्र वही होती है जो हमारे आधार कार्ड पे लिखी होती है? उम्र तो वो है ना जहां सपने देखना बंद हो जाए, जहां जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएं, जहां मन ये मान ले कि अब कुछ नया संभव नहीं है। उम्र बढ़ना या उम्र समाप्त होना, मेरे अनुसार तो इसी को कहते हैं। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या, बताइएगा?

0: सुनी रेनबो पर दोस्तों, लीजिए हमारी विशेष प्रस्तुति संचार साथी। एक्सपर्ट हैं श्री किशोर इक्का, डीडीजी सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस।
1: नमस्कार, आशियाना कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संचार साथी पोर्टल की। ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन हो सकता है इस नाम को लेकर मन में कुछ सवाल हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो आज इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। आप जानते ही हैं, संचार साथी पोर्टल दूर संचार विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं दूर संचार विभाग के सुरक्षा दिल्ली सेवा क्षेत्र के उप महानिदेशक श्री किशोर एका जी। किशोर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, और यहाँ बुलाने के लिए आकाशवाणी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
1: किशोर जी, जैसा कि हमने कहा कि ये नाम तो हमने सुना है, संचार साथी पोर्टल, और थोड़ी बहुत जानकारी भी इसके बारे में है। जो नहीं पता है वो आज हम आपसे जानेंगे। तो शुरुआत हम इसी सवाल से करेंगे कि संचार साथी पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है?
2: संचार साथी पोर्टल दूर संचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसमें मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करने, धोखाधड़ी रोकने और एवं उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह वेब पोर्टल और ऐप के माध्यम में उपलब्ध है। इस पोर्टल के द्वारा जो फोन चोरी हो जाते हैं या खो जाते हैं, उसे ब्लॉक कर सकते हैं, और अपने नाम पे पंजीकृत सिम या मोबाइल कनेक्शन कितने हैं, इसकी भी जानकारी यहाँ से मिलती है
1: जी।
2: और अगर आपके पास पे संदिग्ध धोखाधड़ी संचार या कम्युनिकेशन या कॉल आते हैं, वो सबकी आप शिकायत यहाँ पे कर सकते हैं। ये सुविधाएं नागरिकों को दी गई है इस पोर्टल के माध्यम से
1: जी। तो एक साधारण मोबाइल उपयोगकर्ता संचार साथी को किस तरह से सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या लाभ उसको मिल सकते हैं? कुछ तो आपने अभी हमें बताए, मैं इनके बारे में आपसे पूछूंगी। इसके अतिरिक्त और क्या लाभ है?
2: संचार साथी पोर्टल एक तरह से जन भागीदारी के द्वारा, जो आज के दौर पे जो संदिग्ध कम्युनिकेशन या वित्तीय धोखाधड़ी जो हो रही है
1: जी,
2: तो होने से पहले, जैसे जो अगर किसी नागरिक को उस टाइप के कॉल आते हैं या SMS लिंक आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसको इस संचार साथी पोर्टल में जो एक मॉड्यूल है चक्षु, उस पे वो अपनी शिकायत या अपनी जानकारी उस पे दर्ज करा सकता है। उस जानकारी के बेसिस पे विभाग जिस नंबर से आपके पास कॉल आया था, मैसेज आया था या व्हाट्सएप कॉल आई थी, उसकी जांच कराता है, और अगर उस पे कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो नंबर को बंद किया जाता है और कुछ केस

0: उसमें जो पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको भी ये डाटा दी जाती है, उस बेसिस पे पुलिस इस पे कार्रवाई आगे करती है।
1: जी, यानी अगर कोई संदिग्ध कॉल आया है, मैसेज आया है, तो सीधा चक्षु जो है उस पर हम रिपोर्ट कर सकते हैं और आगे वो पुलिस को बता देते हैं।
0: हाँ, तो मदद हो जाती है। डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पे जिस कनेक्शन से अपने जो कॉल आया था या उसमें आपने संदिग्ध बताया था उसकी जाँच करा के,
1: जी
0: अगर उसमें कुछ संदिग्ध मिलता है आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को
1: उनको बताया जाता है।
0: सेर होती है।
1: एक सवाल ये भी रहता है मन में कि अगर हमारा फोन चोरी हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए। अक्सर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा, हमारी जरूरी तस्वीरें, इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, और अभी तो ये भी होता है कि हम जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी तस्वीरें भी रखते हैं फोन में। तो अगर फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो उसे ब्लॉक करने में या उसे फिर से ढूंढने में क्या ये पोर्टल कुछ मदद कर सकता है?
0: हाँ, इस पोर्टल में एक सुविधा ये भी है कि जो आपका फोन गुम गया या चोरी हो गया तो उसकी मिसयूज रोकने के लिए उसको उस पोर्टल में को ब्लॉक किया जा सकता है। नागरिक स्वयं भी कर सकते हैं या सभी स्टेट के या राज्य के पुलिस के द्वारा भी, थानों के द्वारा भी इसको ब्लॉक किया जा सकता है।
1: जी।
0: और ये एक बार जैसे हो गया तो ये भारत के किसी भी नेटवर्क में, चाहे आप पहले मान लीजिए जैसे जो है आप BSNL यूज करते थे, तो एक बार जैसे जो है आपका इस पोर्टल के माध्यम से अगर ब्लॉक हो गया तो ये किसी भी नेटवर्क पे आपका मोबाइल हैंडसेट चलेगा नहीं, यूज नहीं हो पाएगा।
1: जी
0: हाँ, साथ ही साथ अगर जो ब्लॉक किए गए मोबाइल हैंडसेट पे अगर कोई नया सिम डाल के उसको चालू करने या उपयोग करने की कोशिश करता है, ये डिटेल इकट्ठा करके ये पुलिस को पहुंचता है और जो सिम या नया मोबाइल कनेक्शंस की डिटेल के बेसिस पे पुलिस कार्रवाई करती है और जो खोए हुए मोबाइल को रिकवर करके उनके ओनर्स को,
1: जी,
0: या उनके ओरिजिनल उपभोक्ता को वापस दे
1: सकती है। हाँ। जी, कोई डेटा है ऐसा आपके पास कि अभी तक कितने फोन रिकवर किए गए हैं, कैसे ये पता किया जा सकता है?
0: ये संचार सारथी पोर्टल में ही ये लाइव डाटा नागरिकों को उपलब्ध है और अभी के हिसाब से जैसे जो है जब हम बात कर रहे हैं अभी के हिसाब से 10,52,000 से ज्यादा मोबाइल फोन नागरिकों को विभिन्न राज्यों के पुलिस ने रिकवर करके वापस किए हुए हैं। ये डाटा मतलब लाइव नागरिकों को भी प्रदर्शित हो रहा है इस पोर्टल के माध्यम से,
1: यानी इतने फोन लौटाए जा चुके हैं उनके जो ओरिजिनल ओनर थे उनको और ये डेटा हम देख भी सकते हैं इस पोर्टल पर। अभी आपने सिम कार्ड की बात की थी और अक्सर इस बारे में जागरूक भी किया जाता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आधार कार्ड है उसका कोई दुरुपयोग करके हमारे नाम पर कोई सिम कार्ड ना ले, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे नाम पर, हमारी आईडी पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं इस समय, ये पोर्टल कैसे मदद कर सकता है?
0: हाँ, इस पोर्टल में एक सुविधा ये भी दी गई है कि आप अपने मोबाइल नंबर डाल के आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं वो पोर्टल में ये डिटेल सारी चीजें आपको उपलब्ध होगी।
1: जी,
0: मान लीजिए जैसे जो है आपके यहाँ पे जैसे आपके नाम पे 5 या 6 कनेक्शन चल रहे हैं, उसमें से आपको पता लगा कि भाई ये नंबर या फोन नंबर एक नंबर जैसे जो है जिसको आप नहीं चाह रहे हैं या वो आपको आपकी जानकारी में नहीं है,
1: जी,
0: तो आप वहीं पे रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि ये फोन मुझे नहीं चाहिए या ये मैंने नहीं लिया है, इस बेसिस पे इसको बंद किया जाए। तो डिपार्टमेंट जिस भी ऑपरेटर के थ्रू ये नंबर चल रहा है उसे वो बंद कराता है।
1: जी, तो उसका दुरुपयोग होने से फिर बच सकते हैं। जी किशोर जी, आजकल हम साइबर फ्रॉड के बारे में अक्सर सुनते हैं, सिम क्लोनिंग जैसे शब्द हम सुनते हैं और मन में एक डर भी रहता है कि कहीं ऐसा कोई फ्रॉड हमारे साथ ना हो जाए या हमारा नाम लेकर कोई फ्रॉड ना किया जाए, तो ये जो बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड्स हैं ऐसे में इन अपराधों को रोकने में क्या ये पोर्टल प्रभावी साबित हो सकता है?
0: अब मैंने शुरुआत में ही जैसे जो आपको नीरव जी मैंने बताया था कि जो भी संदिग्ध कम्युनिकेशंस आपके पास आते हैं वो चक्षु पोर्टल पे रिपोर्ट किए जा सकते हैं और विभाग जो है उस नंबर की दोबारा वेरीफाई करवाता है और अगर कुछ उसमें संदिग्ध मिला तो ये पुलिस या अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उनको डाटा शेयर होता ही है।
1: जी।
0: तो एक तरह से ये जन भागीदारी के द्वारा ही इस टाइप के फ्रॉड या वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में ये पोर्टल मदद करता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से सभी नागरिकों को जो श्रोता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब भी इस टाइप के कम्युनिकेशन आए उसको जरूर संचार साथी पोर्टल में चक्षु मॉड्यूल के द्वारा रिपोर्ट करें। ये जो मतलब नागरिकों की भागीदारी से ही ये रोकथाम संभव है।
1: जी, तो सभी का सहयोग जरूरी है और ऐसे में अगर अपनी ओर से हम सतर्क रहेंगे तो एक कलेक्टिव एफर्ट से रोका जा सकता है इस तरह के जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनको। मैं ये भी जानना चाहूंगा

0: देखिए, पोर्टल के बारे में हम लोग सोशल मीडिया से ही जान पाए हैं या फिर कुछ हमें इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिली, लेकिन इस पोर्टल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि इतनी अच्छी सुविधा हमारे पास मौजूद है, उन्हें बताने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
1: इस पोर्टल के बारे में जानकारी फैलाने या नागरिकों को जागरूक करने के लिए विभाग जो है, जैसे जो विभिन्न संचार माध्यमों, जैसे जो पॉडकास्ट है, जैसे आपके आकाशवाणी है, दूरदर्शन चैनल है, उसमें विभाग के अधिकारी या कर्मचारी इस पे जागरूकता कार्यक्रम में भाग जरूर लेते रहे। साथ ही साथ विभाग ने जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं या यंग स्टूडेंट्स हैं को भी नामांकित किया है, उनको प्रशिक्षित किया हुआ है, और उनके द्वारा भी जैसे जो है नागरिकों या घर पे या स्कूल कॉलेज में यंग जनरेशन में जागरूकता या इस पोर्टल के बारे में जानकारी दी जा रही है।
0: जी, तो उनकी मदद से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जा रहा है कि संचार साथी नाम का एक ऐसा पोर्टल हमारे पास है जो जरूरत पड़ने पर बहुत मदद कर सकता है, उससे हमें सही जानकारी भी मिल सकती है। अभी किशोर जी, इंटरनेट के बिना ऐसा लगता है कि जीवन रुक सा गया है। कहीं भी अगर हम एक क्षेत्र से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं या कुछ थोड़े वक्त के लिए भी काम करने जाना पड़ता है तो इंटरनेट की जरूरत सबसे पहले पड़ती है, नहीं तो हमारा काम रुकने लगता है। नए क्षेत्र में कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, किससे संपर्क किया जाए जरूरत पड़ने पर, क्या पोर्टल के माध्यम से हमें पता चल सकता है?
1: हाँ, इस पोर्टल में नागरिकों को एक सुविधा दी गई है कि उस पोर्टल में आप जिस एरिया में हैं तो उस एरिया के पिन कोड से
0: जी
1: उस एरिया में जो अधिकृत इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनीज है उसकी पूरी डिटेल या कॉन्टेक्ट डिटेल्स उस पोर्टल में अवेलेबल करवाई गई है, उपलब्ध कराई गई है,
0: तो वहां से हमें पता चल सकता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अभी साइबर अपराध या यूं कहें कि डराने धमकाने वाली जो कॉल्स होती हैं वो इंटरनेट के माध्यम से आती हैं, जिन पर रेगुलर नंबर नहीं होता है, तो ऐसे में व्हाट्सएप द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी या ऐसा कोई कॉल आए तो क्या उसकी रिपोर्ट भी की जा सकती है?
1: चक्षु पे जो नॉर्मल मोबाइल कॉल या लैंडलाइन से कॉल आ रही है वो उसकी भी, प्लस व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल और SMS के थ्रू भी अगर आपके पास में संदिग्ध कोई भी कम्युनिकेशन आता है उसके सबकी रिपोर्टिंग चक्षु में की जा सकती है।
0: तो कैसे करना होगा, वो स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा या सिर्फ हमें नंबर बता देना है?
1: उस पे जो मॉड्यूल्स है उस पे स्क्रीन शॉट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं
0: जी,
1: और किस माध्यम से जो आपके पास कम्युनिकेशन आया था वो माध्यम भी बताना है और आपकी क्या बात हुई थी उसकी भी डिटेल आप ब्रीफ वहाँ पे दे सकते हैं
0: जी। कई बार हमें बार बार प्रमोशनल कॉल्स आती हैं, अलग अलग कंपनी से हमें कॉल आती है और क्योंकि अननोन नंबर होता है तो हमें वो पिक भी करना होता है, ऐसा लगता है कि काम से जुड़ा हुआ कोई कॉल ना हो, और बाद में पता चलता है कि अलग तरह के सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए कॉल आ रहा है, प्रमोशनल कॉल्स हैं। क्या इनकी शिकायत की जा सकती है या इनको रोका जा सकता है, ऐसा कोई पोर्टल से मदद मिल सकती है?
1: अगर अवांछित कॉल आपके पास आ रही है तो इस पे भी चक्षु में ही एक स्पैम या अवांछित कॉल रिपोर्ट करके एक मॉड्यूल है, उस पे इसकी भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, और अगर उस पे आपकी कंप्लेन अगर सही पाई गई तो वो नंबर भी बंद करवाए जा सकता है।
0: ये भी मैं जानना चाहूंगी किशोर जी, अगर कभी किसी नंबर की रिपोर्टिंग हम कर चुके हैं लेकिन वो गलत फहमी में हो गई है या जल्दबाजी में हो गई है और वो नंबर आपराधिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, सही है, तो क्या रिपोर्ट करने वाले पर कोई कार्रवाई होगी या उसे ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है?
1: नहीं, इस पे अनिलम जी एक चीज है कि जो नंबर के अगेंस्ट में जो नागरिक उनको जो कम्युनिकेशन आया जो उनको जो वो जो रिपोर्ट जैसे जो दर्ज कराते हैं
0: जी,
1: तो डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं या सेवा प्रदान करने वाले हैं उनके थ्रू उस कस्टमर की जेन्युइननेस वेरीफाई कराता है, और अगर वो जेन्युइन रहा तो मतलब उसके नंबर कंटिन्यू चलते हैं और नागरिकों के प्रति जैसे या नागरिकों जिसने कंप्लेन किया था
0: उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती जी। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि हमें ये नंबर जो है इसके ओनर की जानकारी नहीं है और हमने कंप्लेन की तो बाद में हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अपनी डिजिटल सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संचार साथी जो ऐप है इसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये आप हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं के लिए ये संदेश देना चाहूंगा, आज के युग पे जो भी आपको संदिग्ध लगे
0: जी
1: वो जरूर संचार साथी पोर्टल पे दर्ज करवाएं, और जन भागीदारी के थ्रू ही जो आज के युग में जो साइबर फ्रॉड या वित्तीय धोखाधड़ी जो हो रही है
0: जी, जी
1: उसको रोका जा सकता है।
0: किशोर जी, तो हम अपने आसपास के क्षेत्र को और जो हमारी इंटरनेट की दुनिया है इसे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे की जाएगी ये हमें आपने बताया कि ज्यादा से ज्यादा

0: जन भागीदारी जब इसमें रहेगी, हम सतर्क रहेंगे और हमें जो सुविधाएं दी गई हैं दूरसंचार विभाग की ओर से, उनका जब हम उपयोग करेंगे तो हम अपने माहौल को थोड़ा सुरक्षित बना सकते हैं और संचार व्यवस्था जो है वो भी बेहतर हो सकती है। संचार साथी पोर्टल के बारे में आज हमने जाना, तो किशोर जी ये जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद आप लोगों को भी।
0: तो साथियों, हम बात कर रहे थे आशियाना कार्यक्रम में आज श्री किशोर एक्का से, आप उप महानिदेशक सुरक्षा दिल्ली सेवा क्षेत्र दूर संचार विभाग से, और आज हमने इस कार्यक्रम में जाना संचार साथी पोर्टल के बारे में। तो मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रोड्यूसर राजलक्ष्मी सवाई के साथ अब आप सभी से लेती हूं अनुमति, नमस्कार।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और आशियाना में आज की थीम है अक्षय वट यानी कार्यक्रम समर्पित उन सभी वरिष्ठ जनों को जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

दोस्तों, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। आज मैं हूँ आपके साथ आशियाना में विनीता बेदी और आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे वरिष्ठ जनों को। दोस्तों, वरिष्ठ जिनके जीवन का सूरज ढलता नहीं है बल्कि ऐसा दीपक बन जाता है जो धीरे धीरे जलकर भी दूसरों को रोशनी देते रहते हैं। मुझे ना ये कार्यक्रम जैसे ही बात चलती है हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां याद आ जाती हैं, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। पता किस लिए? क्योंकि दोस्तों, अनुभव जो है ना वो इंसान को स्वीकार करना सिखा देते हैं। जो भी है, जैसा भी है, स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करोगे तो जिंदगी के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। दाएं बाएं देखोगे ना तो गड्ढे भी दिखेंगे और शायद कभी पांव भी लड़खड़ाए। इसलिए अनुभव यही कहते हैं कि जैसा भी रास्ता हो, सीना तान कर, सिर ऊंचा कर, मगर आंखें रास्ते पे टिका के चलो।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जय दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम आशियाना में, मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, अब मैं आपको आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसे इंसान से जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि उम्र जो है दैट इज जस्ट अ नंबर, इसके आगे और कुछ भी नहीं। पंजाब में जन्मे फौजा सिंह, जिन्हें दुनिया टर्बंट टॉर्नेडो के नाम से जानती है, 89 यानी 89 की उम्र में उन्होंने दौड़ना शुरू किया। कैन यू बिलीव इट, जिस उम्र में लोग आराम की बात करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, घुटनों में दर्द की शिकायत करते हैं, उस उम्र में फौजा सिंह ने मैराथन में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैराथनों का हिस्सा बनकर ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ और सिर्फ एक संख्या मात्र है। 100 वर्ष की आयु में दोस्तों उन्होंने मैराथन पूरी करके दुनिया को चौंका दिया। और जब उनसे पूछा गया कि उनकी ताकत क्या है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर कहा कि मैं शरीर से नहीं मन से दौड़ता हूं। कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों, मन बूढ़ा ना हो तो जीवन कभी बूढ़ा नहीं होता, सही है ना? तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो जीवन में उम्मीद बनाए रखने की बात करता है। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं।

तब कहा था आपने अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को कि जिया नहीं लगता आपके बगैर, आप घर नहीं होते हो ना तो मन नहीं करता घर लौटने का, या फिर ये कि आपसे बात नहीं होती ना तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है? सच बताइए, दिल पे हाथ रख के कहा क्या आपने उनसे? पर अभी पीछे ना एक ओल्ड एज होम में जाना हुआ और वहाँ के लोगों से जब मिली, बहुत बहुत बहुत प्यार मिला सबसे, इतना ज़्यादा कि मैं हैरान रह गई कि जब इतना प्यार इनके दिलों में समाया हुआ तो ये लोग यहाँ क्यों हैं। लेकिन एक बात जिसने मेरे दिल को बिल्कुल छलनी कर दिया वो ये थी कि जब मैंने उनसे पूछा आपको कोई कमी तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक अंकल बहुत ही प्यार से पता क्या बोले, बेटा कमी नहीं ज़्यादा ही है, इतना समय है, सारी जिंदगी भाग दौड़ में बिता दी और अब लगता है कि समय ही समय है, काटें कैसे। आई स्वेयर वो बात सुनकर ऐसे दिल को चोट लगी कि सारी जिंदगी हम आखिर किसके पीछे भागते रहते हैं जब बुढ़ापे में या बड़ी उम्र में हमसे कोई बात करने वाला ही ना हो। बस आप सबसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दिल की एक यही बात शेयर करने की इच्छा थी कि कभी भी अपने घर के बुजुर्गों को ये एहसास ना होने दें कि उनके पास इतना समय है मगर कोई बांटने वाला नहीं है, है ना। चलिए छोड़िए, ये तो बहुत सेंटी बात हो गई, अब आपसे एक और बात शेयर करती हूँ। बात है ये केरल की भागीरथी अम्मा की। आपको पता है उन्होंने बचपन से ही पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं, लेकिन आस रही मन में, शायद उस समय में जिस जगह जिस गांव में वो रहती थी लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन एक इच्छा थी कि वो भी कॉपी किताब लेकर स्कूल जाएं। और फिर उन्होंने चौथी कक्षा की परीक्षा दी, जानते हैं किस उम्र में, दिल थाम के सुनिएगा दोस्तों, 105 वर्ष की उम्र में। सुनने में अजीब लगता है ना, यकीन नहीं होता, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन फैक्ट ये है कि 105 वर्ष की उम्र में केरल की भागीरथी अम्मा ने चौथी कक्षा की परीक्षा दी। सोचिए, जहां लोग 50 की उम्र में सीखना छोड़ देते हैं, वहां वो महिला 105 की उम्र में किताबें लेकर बैठी थी। जब उनसे पूछा गया कि अम्मा आप पढ़ाई क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि सीखना तो अभी बाकी है ना। आपको पता है दोस्तों, उन्हें केरल सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और उनकी जो कहानी है वो हमें वाकई में बताती है कि सीखने की ना कभी भी कोई उम्र नहीं होती। एक और बात दिल से निकली हुई कि

है ना, आज ही सीखना है। अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसा लगता है प्रोग्राम आशियाना? हर बार जब भी ये प्रोग्राम हम सुनते हैं या ये करने का मौका मिलता है, आपसे बात करने का मौका मिलता है इस कार्यक्रम के जरिए, तो यही बात मन में आती है कि कितने लोग हैं जो ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि इनके छोटे छोटे प्रयास कैसे किसी की दुनिया बदल सकते हैं, किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, किसी को जीने का मकसद दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो सिर्फ किसी के दिल की दो बातें सुन लेते हैं, क्योंकि कभी कभी और कुछ जरूरी नहीं लगता, सिर्फ ये कि कोई तो हो जो हमारे दिल की बात सुने। इसी नोट के साथ दोस्तों आप मुझे दीजिए इजाजत, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद संदेश टू सोल्जर्स में, और आशियाना सुनते रहिए, न जाने कब खुद से ही मुलाकात हो जाए। विनीता कहती है आशियाना समाप्त करने की इजाजत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में पहले ही बोला ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
7: kumchino chaqi inilo hiv eno aids yeza kaidone kinene chigzin kholo hiv kismi susho eno banachipu tsinkyo ani
8: Ayeza hipo kholo akamlalo sukse akirti ashes tuchakyu eno gatao mishi kumlalo ka kholo HIV kismi juknatha eno patale ta munkyo ani
7: ningu kokta lekta kha kyu ye khashi kheni nolo
8: asai po ye Nagaland State AIDS Control Society vecho nomlao sarachani

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Tragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz
4: Sup Sandhya Salam or Namaste Hunita Gasab Bilak Apnar Khan Sabke Swagat Kuriyase Akishvani FM Tragoban 103 MHz Pra Araji Sam Apnar Khan Karunia Nidiyase Apuni Pasand Gana SMS Request Hindi Filmi Git Program De Jiha Apnar Khan Judi Apnar Khan La Pasandita Git Khan Huni Bole Mona Se Itu Program De Aigina Shamil Hobi फिल्म लगा नाम आरो गाना जून तो अपने खान हुनी बुले करने इच्छा से फिल्म लगा नाम गाना ला बोल एक साथ ठेक ठक लिखी की ना पढ़ाई दीवी टिटिया मुई यादे पर खुशी पर अपने खान पसंद करा ला गीत खान बजाई दिया होबो तो हुनी रगा सब बिलाक मुई अपने खान ला मैसेजेस रुकी था कि वो इटु समय टे एक साथ मिलेगी ना हुनी बो शब्दम फिल्म की गीत गाया से अनुराधा पोचुआ

0: 너나 갔어.
1: 그 여태 저요 바호리 토크풀레 하세크풀레 스로베크도 다루제콜레 머리 마트로 초이 그 티테티콜레 라트레 머리 메슈트레크다코 카이크도 라티스
0: 스나우고 태그모 제즈부티케
1: 제히코 나글란 스테이트 에이즈 컨트롤 소사이티 제존 무세스요
2: पुनी ठगा सभी लाइक्या को स्वागत करें से अपनी पसंद गाना एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम टी पुनी ठगा सभी लाइक अमी खाला प्रोग्राम जाए था कि बोले से 7:10 लोगे इतिहाल लोगे अपना खाना ही किना शामिल हुआ नहीं कोई ले मने सब के आको वेलकम करें से तो प्रोग्राम टी एक बार दूसरा गीत करने लिखी किना पताई से बोका जान प्रा अभिजीत और अभिजीत प्रा पसंद करें से हाउसफुल फोर फिल्म की गीत गाये से सोहेल सेंट और विशाल दातला आरो डेडिकेट करी दिसे हुनी ढका सब बिलाके

उनेठगा सबिलाक प्रोग्राम टे बडस्ट्रा गिडिया से सागर फिल्म की गीत गए से किशोर कुमार आरो लता मंगेशकर आरो इटु गीतु हुनिबले मन होइगिना पसंद करिगिना अनुरोध करिसे बालीपथर प्रा दिव्यांका हंसेपी आरो आर्चलिन हंसेपी आरो तार दुजन प्रा इटु गीतु डेडिकेट करि दिसे तार लगा मा बाप रमन हंसे आरो करेंग पांचोपी तो दिव्यांका और आर्चलिन अपना एखन सब ट्यून इन होइगिना थाकिबो गोइना पूरा विश्वास करेसे हुनिबी और एन्जॉय करिबी अपना एखन पसंद करा लागेट सागर फिल्मोट

0: बोलो।
1: अजी लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो
0: जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो
0: नाना।
1: सुनो तो सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: पूछिए देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड खान आ यूनियन टेरिटरीज दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ और दात्रा और नागर हवेली और दमन और दू खान कवर करे इतना एक रिपोर्ट शुनबी पा
1: नागालैंडे इलेक्टोरल रोल्स लगा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन लगा तीसरा भाग हिसाब स्टेट पर डोर टू डोर वेरिफिकेशन टू 13.6 लाख निशना रजिस्टर्ड वोटर्स कारण रखे एनुमरेशन फेज समय 2,432 बूथ लेवल ऑफिसर्स पर हाउस टू हाउस जाने पोलिटिकल पार्टीज पर अपॉइंट कर 2,623 बूथ लेवल एजेंट्स पर असिस्ट कर बीएलओस कारण ट्रेनिंग टू अगस्ट 5 पर 14 तक रखी इट पास वेरिफिकेशन एक्सरसाइज टू अगस्ट 16 सेप्टेम्बर 14 तक राखी बोला से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल टू सेप्टेम्बर 20 तारीख पब्लिश करिबो आरो क्लेम्स आरो ऑब्जेक्शंस टू अक्टोबर 20 तारीख तक जमा दिबोले पारिबो फाइनल इलेक्टोरल रोल टू नवेम्बर 22 ते पब्लिश करिबोला से मेरी आकाशवाणी न्यूज कोहिमा
0: देश दी अपडेटेड और ठीक और सही इलेक्टोरल रूल्स राखी कारण वोटर लिस्ट रिविजन काम बेसि दरकार गलमिकता आछे चीफ मिनिस्टर निफ्यूरियोरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली लग कर श्रीरियो डेपुटी चीफ मिनिस्टर्स खान टी आर जेलियांग वाई पेटन एम एल ए अचम्पी मक्कीकन और दूसरा खान जैसे सोशल मीडिया की कथा कर श्री पेटन कैसे कि डेलीगेशन यूनियन मिनिस्टर नागालैंड लगा फाइनेंसियल अवस्था जाना और उन्नति कारण नारकीगना मदद दी अनुरोध कर नियम ना हुआ ड्रग ट्राफिकिंग खिलाफी कारा गदम जारी राखी आदि कोहिमा पुलिस पर सस्पेक्टेड हेरोइन और ओबीएम टू दुईटा अलग अलग ऑपरेशन्स दी इतो महीना कब्जा करिसे पहला ऑपरेशन तो मे 5 तारीख पुलिस पर एक गाड़ी तो किटिमाब्रा विश्वमाभाली जाए थके रखाईना सस्पेक्टेड हेरोइन लगा 302 ग्राम्स निशिना 25 सबुन केसेस दी बैसे दुईटा मानकान कारामो आजिया और ए एल के स्टोन खान गिरफ्तार करता मानु खान भी महान चित्री और आर छाउनाई खान भी गिरफ्तार कर पुलिस पर कैसे कि केसेस खान दर्ज करना इन्वेस्टिगेशन जारी जाए चार दिन रखिया ट्रेनिंग प्रोग्राम दो सेंसेस 2027 लगा मास्टर ट्रेनर्स कारण डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशंस नागालैंड कोहिमा दी राखी आ ट्रेनिंग परा सेंसेस लगा फेज वन लगा सब काम दे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसेस मिला कि दरकार रखी आसे जन तो मे 16 तक जारी रखे इटो खोल सेशन दी डायरेक्टर सेंसेस ऑपरेशंस डॉक्टर केनी मेचियो परा भाग लुआ खान लोग सेंसेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो सेंट्रल और स्टेट लेवल दी जाना दी और मास्टर ट्रेनर्स लगा काम दो ट्रेनिंग कैसकेट दी दरकार लिंक हिसाब से जाना सब मिला कि 6 ट्रेनर्स खान दी 4 तो स्टेट सरकार और 2 तो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस पर मिला कि भाग लो आसे तईन पर 130 फील्ड ट्रेनर्स शिकाय दी आ जो पर स्टेट 6,000 निचना एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स शिका बोले आसे आकाशवाणी कोहिमारपनी खान खबर आनी दी आसे ताजा खबर शुनबे आम खान लगा एक सेंडल्स ए आई आर निज एलार्ट और ए आई आर अंडरस्कोर कोहिमा दी फलो करी अपनी खान बा इदु खबर दो निज ऑन इयर एप और यूट्यूब चैनल ए आई आर निज कोहिमारपरा शुनबी पा वेलकम बैक अपनी खान सामलगा खबर शुनी आसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस डि जि इंडिया इंडेक्स 4.0 और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एस डि जि इंडेक्स 2.0 दो आज डिमापुरी राखी से मीटिंग की कथा कर एडिशनल डेपुटी कमिश्नर डॉक्टर डायना पेटन कैसे इंडिया 17 यूनाइटेड नेशंस एस डि जिस 2030 तक टी कामयाब हमारी चेस्टा करना रिन्यूएबल एनर्जी सैनिटेशन और बेसिक सर्विसेस आगे बढ़ाई आसे किन्तु तार कैसे कि दुखान तो क्लाइमेट चेन्ज जेंडर इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन खान थी आसे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल प्रेजेंट कर ई एस सी एम टी चंगला लम्टर कैसे 2023-24 24 NER district SDG index the 121 districts majority Dimapurba rank 10 paise Dimapurba affordable aro safa energy economic growth infrastructure sustainable cities aro climate action di mazbut performance dikhaise Bosti Khandi electrification korea khabuli pani dia sanitation aro education sector di sudhari

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन

0: रिंगशर SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
1: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक

0: की उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
1: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
2: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
1: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई

0: की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The theme of the

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फ्राई करिया होमय तेल लगा बिशी प्रॉपर्टीज खान बदली हो जाए आरो एके तेल तु बार बार चलाइले टोटल पोलर कंपाउंड्स टीपीसी तु बनाय जाए। इतु कंपाउंड्स खान तु काउ कारणे बिया आसे आरो इतु परा किसिम बीमारी उलाइ दे जुन्तु खान आसे हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज आरो लिवर बीमारी। कंज्यूमर्स खान लगा हेल्थ तु बचाई किना राखिबो कारणे FSSAI परा टीपीसी लगा लिमिट तु 25% राखि किना आसे आरो इतु लिमिट उपरते वेजिटेबल ऑयल तु ना चलाबो लागे। अपुनी लगा हेल्थ तु बचाई किना राखिबोले इतु कदम खान लबि। फ्राई करिबोले वेजिटेबल ऑयल हि चलाबि। पारियाता कुकिंग ऑयल तु एकबार हि चलाबि। खालुआ फ्राई करी के बचिया तेल तो फिल्टर करी के खाली एक बार ही चलाबी। बाची के थका तेल तो दुई दिन भीतर ते चलाइ लबी। सब्जी तो कमती टेम्परेचर ते फ्राई करी। तेल गरम करिया समय तेल पारा धुआं ऊलब ना दी लगे। फ्राई करिया समय खालुआ टुकड़ा खान तो कला नोहा आगे ते बार बार ऊलि थी। फ्राई करे कारण फ्रायर नहलिबि स्टेनलेस स्टील बर्तन ही चलाबी। टेस्ट और गुण बिया ना ऊलब कारण लोहा लगा कराई खान ही चलाबी। इतु जानकारी दी स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।

उनी ठगा सब बिला किया को स्वागत करे से आकाशवाणी एफएम ट्रैकअपन 110 मेगाहर्ट्ज पर आ रही थी समय थे अपना कन कारण यानी दिया से पुरानी हिंदी फिल्मी किच प्रोग्राम आरो सबसे पहला थे अपना कन हुनी ठगी से निका फिल्मोट सलमा अगा लगा वास्ते आरो प्रोग्राम होते एक बार दूसरा गीत दिया से शालीमार फिल्म के गीत गाए से किशोर कुमार